जो भी दूल्हे अभी तक शेरे बंदाई की रस्म के लिए दरबार साहब में नहीं पहुंचे हैं, उनके रिश्तेदारों से बेनती है कि उन्हें जल्द से जल्द शेरे बंदाई की रस्म के लिए यहां पर लेकर आए। समय का हमने सभी ने ख्याल रखना है ताकि आगे की सभी रस्में समय पर संपन्न की जा सके। शेरे बंदाई की रस्म के उपरांत दरबार साहब के नीचे के निशान साहब के पास दूल्हों की आरती के लिए टेंट की व्यवस्था की गई है। सभी दूल्हों की बहनों ने शेरे बंदाई की रस्म के बाद आरती के लिए दरबार साहब के नीचे स्टैंड के पास आरती के लिए खड़े होना है। उसके उपरांत गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड द्वारा दूल्हों के लिए सामूहिक रूप से ले जाने के लिए बस की व्यवस्था है। सभी दूल्हों ने उस बस में बैठकर सामूहिक रूप से बारात श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी भवन की ओर जाएगी, जहां पर गुरु ग्रंथ साहिब जी भवन के बाहर समधि मिलाप के लिए आपको स्थान दिए गए, उसी स्थान पर समधि मिलाप की रस्म संपन्न होगी। ठीक 11 बजे दुल्हनों के कल्याणदान की रस्म संपन्न होगी। उसके उपरांत गुरु महाराज की हजूरी में धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के पावन हुक्मनामे के उपरांत लावा साहिब का पाठ होगा और 71वें सामूहिक विवाह मिलावे की संपन्नता होगी। दुल्हनों की विदाई की रस्म भी मंच से ही की जाएगी, इसीलिए सभी से हाथ जोड़कर बेनती है कि सभी ने समय का ध्यान रखना है। दूल्हा दुल्हनों के माता पिताओं से भी बेनती है कि आई हुई सात संगत को लंगर छकाने के लिए लंगर में आपके परिवार से कम 10-10 सदस्यों को सेवा के लिए आपने भेजना है, ताकि जो भी सात संगत गुरु महाराज के लंगर में लंगर छकने के लिए आई है उसे लंगर छकाया जा सके। सभी से हाथ जोड़कर बेनती है कि सामूहिक विवाह में लावे की रस्म के उपरांत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी भवन के मैदान में लंगर की व्यवस्था की गई है। सभी ने लंगर चक्कर गुरु महाराज जी की खुशियां प्राप्त करनी है।

महाराज धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की अपार रहमत कृपा का सदका निरंतर 71वां सामूहिक विवाह मेलावा गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड के सहयोग से मान्यो पंच प्यारे साहिबान की सरप्रस्ती में यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है। हम पुनः एक बार दूल्हा दुल्हन के माता पिताओं से विनती करते हैं कि आपको जो समय दिया गया उस समय का आपने ध्यान रखना है ताकि सामूहिक विवाह मिलावे की सभी रस्में समय पर संपन्न की जा सके। कुछ ही क्षणों में गुरु महाराज की हजूरी में अरदास के उपरांत शेरे बधाई की रस्म संपन्न होगी। सभी दूल्हे अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। गुरु महाराज की हजूरी में शेरे बधाई की रस्म की अरदास होने जा रही है।

सभी दूल्हे अपने स्थान पर बैठ जाएं। मान्यो पंच प्यारे साहिबान के कर कमलों द्वारा यहाँ पर शेरे मदाई की रस्म संपन्न होगी। रस्म के उपरांत सभी दूल्हों ने गुरु महाराज की हजूरी में माथा टेक कर दरबार साहब की परिक्रमा कर सामूहिक रूप से बारात श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी भवन की ओर प्रस्थान करेगी, जहाँ पर ठीक 10:30 बजे समधि मिलाप की रस्म संपन्न होगी और ठीक 11 बजे दुल्हनों की कन्यादान की रस्म संपन्न होगी। उसके उपरांत धन धन साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के पावन हुक्मनामे के उपरांत लावा साहेब का पाठ होगा और 71वें सामूहिक विवाह मिलावे का संपन्नता होगी। सभी से हाथ जोड़कर बेनती है, सभी ने समय का ध्यान रखते हुए लंगर हॉल में अपनी सेवाएं देनी है।

0: करते हैं इधर ही सामने।
1: सभी दूल्हे अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अरदास के उपरांत सभी ने दरबार साहब में माथा टेकना है और सामूहिक रूप से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी भवन की ओर बारात प्रस्थान करेगी।

सभी दूल्हे गुरु महाराज की हजूरी में माथा टेक कर दरबार साहब की परिक्रमा के उपरांत नीचे के निशान साहब के पास दुल्हनों के दूल्हे की बहनों ने आरती के लिए खड़े होना है। वहां पर आरती के उपरांत सभी दूल्हे गुरुद्वारा साहिब द्वारा जो बस उपलब्ध कराई गई है उस बस में बैठकर सामूहिक रूप से बारात श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी भवन की ओर जाएगी, जहां पे ठीक 10:30 बजे बाहर संधि मिलाप की रस्म संपन्न होगी। ठीक 11 बजे दुल्हन के माता पिता दुल्हन का कन्यादान के लिए श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी भवन में उपस्थित रहेंगे। उसके उपरांत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के पावन हुक्मनामे के उपरांत लांबा साहब का पाठ होगा और सामूहिक विवाह मेलावे का जो लंगर है वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी भवन के मैदान में है। सभी नौजवानों से सत्संग से हाथ जोड़कर बेनती है, आप सभी ने लंगर में सेवाएं देनी है और लंगर चक्कर गुरु महाराज जी की खुशियां प्राप्त करनी है। सभी दूल्हों से बेनती है कि समय का अभाव है, समय का ध्यान रखते हुए आप सभी ने जल्द से जल्द दरबार साहब में माथा टेक कर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी भवन की ओर प्रस्थान करना है, ताकि बाकी जो रस्में वो समय पर संपन्न की जा सके। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

जी गुरु निवास अंतर्याम सच्चे पातशाह जी महाराज धन धन साहिब श्री गोबिंद सिंह जी महाराज आप जी के पावन दरबार तक सचखंड श्री हजूर साहब विखे कीर्तन की हाजरी भरते हमें आप जी संगत वालों बेअंत माया हाजिर हुई है। जिस खजाने चो माया हाजिर हुई है सुख जाने भरपूर करने गुरु सिखी नाम दान की बख्शिश करनी यात्रा सतरी करनी।

जंत्र हरिय मंत्र हरि सो तेज हरिय तंत्र हरि अजात हरिय पाद हरिय मित्र हरिय मात हरिय रोग हरिय शोक हरिय भ्रम हरिय कर्म हरि अजय हरिय भय हरिय भेद हरिय छेद हरिय खंड हरिय भंड हरिय दंड हरि।

न द्रोहं न द्वैखं न कर्मं न भर्मं न जन्मं न जातं न मित्रं न सत्रं न पितरं न मातं न नेहं न गेहं न कामं न धामं न पुत्रं न मित्रं न सत्रं न भावं लेखं भवेखं जोनि स्वरूपं सदा सिद्धदा बोद्धदा वृद्धरूपं नहीं जान जाई कछु रूप रेखं कहा बासता को फिर कौन भेखं कहा नामता को कहा कह कहा वे कहा कह बखानो कहे मैं न आवे न रोगं न सोगं न मोहं न मातं न कर्मं न भर्मं न जन्मं न जातं अद्वेखं अवेखं जोनि स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे परेयं परा परं प्रज्ञा प्रकाशी अछेदं गच्छयाद अद्वय अविनाशी न जातं न पातं न रूपं न रंगे नमो आदभंगे नमो आदभंगे किते कृष्ण से कीट कोटे उपाय सारे गड़े फेर मिटे बनाए अकादे अभयाद अद्वय अविनाशी परेयं परा परं पूरण प्रकाशी न आधंग न व्याधंग गाधंग स्वरूपे अखंडक प्रतापाद अक्षय विभूते न जन्मंग न मरणंग न वर्णंग न व्याधे अखंडे प्रचंडे दंडे असाधे न नेहं न गेहं सनेहं सनाथे उदंडे अमंडे प्रचंडे प्रमाथे न जाते न पाते न सत्रे न मित्र स्वभूते भविखे भवाने अचित्रे न रायं न रंगं न रूपं न रेखं न लोभं न चोभंग भूतंग भेखं न सत्रं न मित्रं न नेहं न गेहं सदेवं सदा सर्व सर्वत्र सनेहं न कामं न क्रोधं न लोभं न मोहं न जोनि अच्छयाद अद्वय अजोहं न जन्मं न मरणं न वर्णं न व्याधं न रोगं न सोगं अभय निर्विघातं अछेदंग भेदंग कर्मंग कालंग खंडंग भंडंग प्रचंडंग पालंग न तातंग न मातंग न जातंग न कायंग न नेहंग न गेहंग न भर्मंग न भायंग न रूपंग न भूपंग न कायंग न कर्मंग न त्रासंग न प्रासंग न भेदंग न भर्मंग सदेवंग सदा सिद्ध बिरधंग स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे नृयुक्तं प्रभा आदनुक्तं प्रतापे यजुक्तं गच्छयाद विक्ते यथापे विभुक्तं गच्छयाद अच्छय स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे न नेहं न गेहं न शोकं न साकं परेयं पवित्रं पुनीतं गताकं न जातं न पातं न मित्रं न मंत्रे नमो एक तंत्रे नमो एक तंत्रे न धर्मं न भर्मं न सर्वं न साके न वर्मं न चर्मं न कर्मं न बाके न सत्रं न मित्रं न पुत्रं स्वरूपे नमो आदरूपे नमो आदरूपे कहूं कंज के मंज के भरम भूले कहूं रंग के राज के धर्म लूले कहूं देश के भेष के धर्म धामे कहूं राज के साज के बाजतामे कहूं अक्षर के पक्षर के सिद्ध सादे कहूं सिद्ध के बुद्ध के वृद्ध लादे कहूं वंग के रंग के संग देखे कहूं जंग के रंग पेखे कहूं धर्म के कर्म के हरम जाने कहूं धर्म के कर्म के भरम माने कहूं चार चेष्टा कहूं चित्र रूपं कहूं परम प्रज्ञा कहूं सर्वभूपं कहूं नेह गृहं कहूं देह दोखं कहूं औखदी रोग के सुख सोखं कहूं देव विद्या कहूं दैत बानी कहूं जछ गंधर्व किन्नर कहानी कहूं राजसी सात की तामसी हो कहूं जोग विद्या धरे तापसी हो कहूं रोग रहता कहूं जोग जुगतं कहूं भूमि की भुगत मैं भरम भुगतं कहूं देव कन्या कहूं दानवी हो कहूं जिच्छ विद्या धरे मानवी हो कहूं राजसी हो कहूं राज कन्या कहूं सृष्टि की पृष्ठ की रिष्ट पन्नया कहूं वेद विद्या कहूं व्योम बानी कहूं कोक की काव कथा कहानी कहूं अत्र सारं कहूं भद्र रूपं कहूं मद्र बानी कहूं क्षुद्र स्वरूपं कहूं वेद विद्या कहूं काव रूपं कहूं चेष्टाचार चित्रं स्वरूपं कहूं परम पुराण को पार पावे कहूं बैठ कुरान के गीत गावे कहूं शुद्ध सेखं कहूं ब्रह्म धर्मं कहूं वृद्ध अवस्था कहूं बाल कर्मं कहूं ज्वाल स्वरूपं जरा रहत देहं कहूं नेह देहं कहूं त्याग गृहं कहूं जोग भोगं कहूं रोग रागं कहूं रोग हर्ता कहूं भोग त्यागं कहूं राज साजं कहूं राज रीतं कहूं पूरण प्रज्ञा कहूं परम प्रीतं कहूं आर भी तोर की पारसी हो कहूं पहलवी पस्तवी संस्कृति हो कहूं देश भाख्या कहूं देव बानी कहूं राज विद्या कहूं राजधानी कहूं मंत्र विद्या कहूं तंत्र सारं कहूं जंत्र रीतं कहूं शस्त्र धारं कहूं होम पूजा कहूं देव अर्चा कहूं पिंगला चारणी गीत चर्चा कहूं बीन विद्या कहूं गान कीर्तन कहूं मलेज भाख्या कहूं वेद रीतं कहूं नृत्य विद्या कहूं नागबानी कहूं गारडू गूढ़ कथा कहानी
कहूँ अक्षरा पक्षरा मच्छरा हो, कहूँ वीर विद्या भूतं प्रभा हो, कहूँ छैल छाला धरे छत्रधारी, कहूँ राज साजं थे राजाधिकारी। नमो नाथ पूरे सदा सिद्ध दाता, अछेदी अछयाद अद्वै विधाता, न त्रस्तं न ग्रस्तं समस्तं स्वरूपे। नमस्तं नमस्तं तु अस्तं भूते, त्वप्रसाद पाधड़ी छंद। अव्यक्त तेज अनुभव प्रकाश, अच्छे स्वरूप अद्वै अनासान, तुट तेज अनखुट भंडार दाता, तुरंत सर्वंग प्रकार। अनुभूत तेज अंशे जगात करता, सदीव हरता सनाथ, आसन अडोल अनुभूत करम दाता, दयाल अनुभूत धर्म। जय शत्रु मित्र नहीं जन्म जात, जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मात, जय करम भरम नहीं धर्म ध्यान, जय नेह गेह नहीं ब्योतबान। जय जात पात नहीं शत्रु मित्र, जय नेह गेह नहीं चिहन चित्र, जय रंग रूप नहीं राग रेख, जय जन्म जात नहीं भरम भेख। जय करम भरम नहीं जात पात नहीं नेह गेह नहीं पितृ मात, जय नाम धाम नहीं वर्ग ब्याद, जय रोग शोक नहीं सत्र साथ। जय त्रास वास नहीं देह नास, जय याद अंत नहीं रूप रास, जय रोग शोक नहीं जोग जुगत, जय त्रास आस नहीं भूम भुगत। जय काल ब्याल कट्यो नांग, अक्षय स्वरूप अक्षय अभंग, जय नेत नेत उचरंत वेद, जय अलख रूप कथत कतेब। जय अलख रूप आसन अडोल, जय अमित तेज अक्षय अतोल, जय ध्यान काज मुंजन अनंत, कई कल्प जोग साधत तुरंत। तन शीत घाम वर्षा सहंत, कई कल्प एक आसन वितंत, कई जतर जोग विद्या विचार साधंत, तद पावतना पार। कई ऊर्ध बाह देशन भ्रमंत, कई ऊर्ध मध्य पावक झुलंत, कई सिमृत शास्त्रत उचरंत वेद, कई कोक काव कथत कतेब। कई अग्नहोत्र कई पवन हार, कई कर्त कोट मृत को हार, कई कर्त साग पय पत्र भाष नहीं, तदब देव होवत प्रत्यक्ष। कई गीत गान गंधर्व रीत, कई वेद शास्त्र विद्या वर्तीत, कहूँ वेद रीत जगे आदि करम, कहूँ अग्नहोत्र कहूँ तीर्थ धर्म। कई देश देश भाखार टंत, कई देश देश विद्या पटंत, कई कर्त भांत भांतन विचार नहीं, नायकता सपायत न पार। कई तीरथ तीरथ भरमत सो भरम, कई अग्नहोत्र कई देव करम, कई कर्त वीर विद्या विचार नहीं, तदवता सपायत न पार। कहूँ राज रीत कहूँ जोग धर्म, कई सिमृत शास्त्र तुचरत सो करम, न्योली याद करम कहूँ हस्तदान, कहूँ अश्वमेध मख को बखान। कहूँ करत ब्रह्म विद्या विचार, कहूँ जोग रीत कहूँ वृत चार, कहूँ करत दक्ष गंधर्व गान, कहूँ धूप दीप कहूँ अर्घ दान। कहूँ पितृ कर्म कहूँ वेद रीत, कहूँ नृत्य नाच कहूँ गान गीत, कहूँ करत सास सिमृत उचार, कई भजत एक पग निराधार। कई नेह देह कई गेह वास, कई भ्रमत देश देश अनुदास, कई जल निवास कई अगन ताप, कई जपत ऊर्ध लटकंत जाप। कई जपत जो कल्पं प्रजंत नहीं, तदवतास पायतनांत, कई कर्त कोट विद्या विचार नहीं, तदवदिष्ट देखे मुरार। बिन भगत सगत नहीं परत पान, बहु करत होमर जगदान, बिन एक नाम एक चित्त लीन, फोकटो सर्वधर्मा विहीन। त्व प्रसाद तोटक छंद, जय जंप हो जुगण जूह जुवंग, भय कंप हो मेर पयाल भुवंग, तब तापस सर्व जलेर थलंग, धन उचरत इंद्र कुमेर बलंग। अनखेद स्वरूप अभेद भयंग, अनखंड अभूत छेद छियंग, अनकाल अपाल दयाल स्वंग, जय ठट्यंग मेर आकाश भुवंग। अनखंड अमंड प्रचंड नरंग, जय रचयंग देव देव बरंग, सबकी नी दीन जमीन जमा, जय रचयंग सर्व मकीन मका। जय राग न रूप न रेख रुखंग, जय ताप न साप न शोक सुखंग, जय रोग न शोक न भोग भुयंग, जय खेद न भेद न छेद छयंग। जय जात न पात न मात पितंग, जय रचयंग छत्री छत्र छितंग, जय राग न रेख न रोग भणंग, जय द्वैख न दाग न दुख गणंग। जय अंड हते ब्रह्मंड रच्यो, दस चार करी नवखंड सच्यो, रज तामस तेज तेज कियो, अनुभव पद आप प्रचंड लियो। श्रेय सिंध रूपिंद नगिंद नकंग, श्रेय जक्ष गंधर्व फणिंद भुजंग, रच देव देव अभेव नरंग, नरपाल रिपाल कराल त्रिगंग।
कई कीट पतंग भुजंग रंग रच अंडज से तज उद भुजंग किए देव देव सराद पितंगन खंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभ जात न पात न ज्योत जुतंग जेह तात न मात न भ्रात सुतंग जेह रोग न शोक न भोग भुअंग जेह जंप है किन्नर जच जुअंग नर नार नपुंसक जाहि किए गण किन्नर जाच भुजंग दिए गज बाजर था दिग पांत गणंग भवभूत भवेख भवान तुअंग जेहे अंडज से तज जेर रजंग रच भूम आकाश पताल जलंग रच पावक पवन प्रचंड बली बन जास कियो फल फूल कली भुव मेर आकाश निवास छितंग रच रोज एकादश चंद्र वृतंग दुध चंद दिनी सह दीप दई जेह पावक पवन प्रचंड मई जय खंड अखंड प्रचंड किए जय छत्र उपाय छपाय दिए जय लोक चतुर्दश चार रचे नर गंधर्व देव देव सच्चे अंधूत भूत छूत मतंगन गाद प्याद नाद कतंगन खेद अभेद अछेद नरंग जय चार चतुर्दश चक्र फिरंग जय राग न रंग न रेख रुखंग जय शोक न भोग न जोग जुगंग भुव भंजन गंजन आदि सरंग जय बंदत देव देव नरंग गण किन्नर जच भुजंग रचे मण माणक मोती लाल सुचे अन भंज प्रवान गंज प्रतंग जय पार न पावत पूर मतंग अनखंड स्वरूप दंड प्रभा जय जंपद वेद पुराण सभा जय खेम जय वेद कतेब अनंत कहे जय भूत अभूत न भेद लह जय वेद पुराण कतेब जपय सुत सिंध अधो मुख ताप तपय कई कल्पन लो तब ताप करे नहीं नैक कृपा निध पान पर जय भोकड़ धर्म सभय तज है एक चित्त कृपा निध को जग है दिखते हुआ भव सागर कोतर है भव भूल न देह पुनर्धर है एक नाम बिना नहीं कोट प्रति एम वेद उचारत सार सुती जो वारस के चस के रस है ते भूल न काल फंदा फस है त्व प्रसाद नराज छंद अगंज आद देव है अभंज भंज जानिए अभूत भूत है सदा गंज गंज मानिए अदेव देव है सदा भेव भेव नाथ है समस्त सिद्ध वृद्ध दास देव सर्वसात है अनाथ नाथ नाथ है अभंज भंज है सदा गंज गंज गंज है सदीव सिद्ध वृद्ध दा अनूप रूप स्वरूप है अछिज तेज मानिए सदैव सिद्ध शुद्धता प्रताप पत्र जानिए न राग रंग रूप है न रोग राग रेख है अदोक ताग दग है अभूत ब्रह्म भीख है न तात मात जात है न पाद चिहन वरण है अदेघ सेघ भीख है सदैव विश्व वरण है विश्वंभर विश्वनाथ है विशेख विश्व वरण है जिमी जमान के भीख सदैव करम भरम है अद्वेख है अभेक है अलेख नाथ जानिए सदीव सर्व ठौर में विशेख आन मानिए न जंत्र में न तंत्र में न मंत्र बस आवई पुराण औ कुरान नेत नेत कह बतावई न करम में न धर्म में न भरम में बताइए गंज आद देव है कहो सो कैस पाइये जिमी जमान के बिखे समस्त एक ज्योत है न घाट है न बाढ़ है न घाट बाढ़ होत है नहान है नबान है समान रूप जानिए मकीन ओ मकान प्रमाण तेज मानिए न देह है न गेह है न जात है न बाध है न मंत्र है न मित्र है न तात है न मात है न अंग है न रंग है न संग है न साध है न दोख है न दाग है न द्वैख है न देह है न सिंह है न स्यार है न राव है न रंग है न मान है न मौत है न साग है न संग है न जच है न गंधर्व है न नर है न नार है न चोर है न साव है न साह को कुमार है न देह है न गेह है न देह को बनाओ है न छल है न छिद्र है न छल को मिलाओ है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को स्वरूप है न राग है न रंग है न रेख है न रूप है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को बनाओ है न छल है न छिद्र है न छाया को मिलाओ है न राग है न रंग है न रूप है न रेख है न कर्म है न धर्म है अजन्म है अभेक है न तात है न मात है अख्याल अखंड रूप है अछेद है अभेद है न रंग है न भूप है परे है पवित्र है पुनीत है पुराण है अगंज है अभंज है गरीम है कुरान है अकाल है अपाल है ख्याल है अखंड है न रोग है न शोक है न भेद है न भंड है न रंग है न रंग है न संग है न साथ है प्रया है पवित्र है पुनीत है प्रमात है
न सीध है न सोच है न ग्राम है न घाम है न लोभ है न मोह है न क्रोध है न काम है न देव है न तैद है न नर को स्वरूप है न छल है न छिद्र है न छिद्र की विभूत है न काम है न क्रोध है न लोभ है न मोह है न द्वैग है न भेक है न दुई है न द्रोह है न काल है न बाल है सदीव दयाल रूप है अगंज है अभंज है अभरम है अभूत है अछेद छेद है सदा गंज गंज गंज है अभूत अवेक है बलि अरूप राग रंग है न द्वैग है न भेक है न काम क्रोध कर्म है न जात है न पात है न चित्र चिहन वर्ण है बेअंत है अनंत तेज जानिए अभूम विज है सदा अछिज तेज मानिए न आद है न व्याद है अगाध रूप लेखिए अदोघ है अदाघ है अच्छे प्रताप पेखिए न कर्म है न भरम है न धर्म को प्रभाव है न जंत्र है न तंत्र है न मंत्र को रलाव है न छल है न छिद्र है न छिद्र को स्वरूप है अभंग है अनंग है अगंज से विभूत है न काम है न क्रोध है न लोभ मोहकार है न आध है न गाध है न व्याध को विचार है न रंग राग रूप है न रूप रेखरार है न हाव है न भाव है न दाव को प्रकार है गजाधपि नराधपि करंत सेव है सदा से तस्पति तपस्पति वनस्पति जप सदा अगस्त आद जे बटे तपस्त भी विशेखिये बेअंत बेअंत बेअंत को करंत पाठ पेखिये अगाध आद देव की अनाथ बात मानिए न जात पात मंत्र मित्र सत्र स्नेह जानिए सदीव सर्वलोक के कृपाल ख्याल में रहे तुरंत द्रोह देह के अनंत भांत सोत है तव प्रसाद रूआमल छंद रूप राग न रेख रंग न जन्म मरण विहीन आदनाथ अगाध पुरक सो धर्म करम प्रवीण जंत्र मंत्र न तंत्र जाको आद पुरख अपार हस्त कीट बिखे बसे सब ठौर में निर्धार जात पात न तात जाको मंत्र मात न मित्र सर्व ठौर बिखे रमयो जय चक्र चिहरण चित्र आद देव उदार मूर्त अगाध नाथ अनंत आद अंत न जानिए अभिखाद देव दुरंत देव भेव न जान ही जे मरम वेद कतेब सन गौ सन केश नंदन पावई न सेब जछ किन्नर मछ मानस मुर्ग उर्ग पार नेत नेत पुकार ही शिव सक्र मुख चार सर्व सपद बतार के तर जाप ही जह जाप आद देव अगाध तेज अनाद मूर्त ताप जंत्र मंत्र न आवई कर तंत्र मंत्र न गीर सर्व ठौर रहे ओ विराज धीराज राज प्रवीण जाछ गंधर्व देव दानो न ब्रह्म क्षत्रिय माहे वैसनंक विखे विराजे शूद्र भी वह नाहे गुड़ गौड़ न भील भीखर ब्रह्म से एक स्वरूप रात दिवस न मध उर्ध न भूम आकाश अनूप जात जन्म न काल करम न धर्म करम विहीन तीर्थ जात्रण देव पूजा गोर के न अधीन सर्व सपत पतार के तर जानिए जह ज्योत शेष नाम सहंस फन नहि नेत पूर्ण होत सोद सोद हटे सभ सुर विरोध दानव सरब गाय गाय हटे गंधर्व गवाए किन्नर गर्भ पड़त पड़त थके महागव गढ़त गाढ़ अनंत हार हार कहो सभो मेर नाम नाम दुरंत वेद भेद न पायो लखे न सेव कतेब देव दानो मूड मानो यश न जाने जेब भूत भव भवान भूपथ आदनाथ अनाथ अगन बाय जले थले महे सर्व ठौर निवास देह गेह न ने स्नेह अबेह नाथ अजीत सर्व गंजन सर्व भंजन सर्व ते अनभीत सर्व कर्ता सर्व हर्ता सर्व दयाल द्वेख चक्र चिह्न न वर्ण जाको जात पात न भेख रूप रेख न रंग जाको राग रूप न रंग सर्व लायक सर्व गायक सर्व ते अनभंग सर्वदाता सर्व ज्ञाता सर्व को प्रतपाल दीन बंध दयाल स्वामी आद देव पार दीन बंध प्रवीण श्रीपद सर्व को करतार वर्ण चिहन या चक्र जा को चक्र चिहन कार जात पात न गोत्र गाथा रूप रेख न बरन सर्वदाता सर्व ज्ञाता सर्व भू को भरन दुष्ट गंजन शत्रु भंजन परम पुरख प्रमाथ दुष्ट हर्ता सृष्ट कर्ता जगत मय जय गाथ
भूत भव भवेख भवान प्रमाण देव अगंज आद अंत अनाद श्री पद परम पुरख अभंज। धर्म के अन करम जेता कीन तौन पसार देव देव गंधर्व किन्नर माछ का चपार। भूम का जले सरे मेहमानिये जय नाम दुष्ट हरता पुष्ट करता श्रेष्ठ हरता काम। दुष्ट हरना श्रेष्ठ करना दयाल लाल गोबिंद मित्र पालक शत्रु घालक दीन दयाल मुकंद। अघाओ दंडन दुष्ट खंडन काल हो के काल दुष्ट हरनंग पुष्ट करनंग सर्व के प्रतपार। सर्वकर्ता सर्वहर्ता सर्व के अनकाम सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व के निज भाम। सर्व भोक्ता सर्व जुगता सर्व करम प्रवीण सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व करम अधीन। सर्व सिमृतन सर्व शास्त्रन सर्व वेद विचार दुष्ट हर्ता विशु भर्ता आदि रूप अपार। दुष्ट दंडन पुष्ट खंडन आद देव अमंड भूम का जले थले मह जपत जाप अमंड। श्रेष्ठ चार विचार जेते जानिए सब चार आदि अन्नदाता ज्ञान ज्ञाता सर्व मान महेंद्र वेद व्यास करे कई दिन कोट इंद्र उपेंद्र। जन्म जाता कर्म ज्ञाता धर्म चार विचार वेद भेवना पावे शिव रुद्र अमुख चार। कोटिंद्र उपेंद्र व्यास सनक सनत कुमार गाय गाय थके गंधर्व चक्रत भे कुंचार। आद अंतना मध्य जाको भूत भव भवान सत द्वापर तृतीया कलयुग चतुर काल प्रधान। ध्याय ध्याय थके महामुन गाय गंधर्व पार हार हार थके सबे नहीं पाइये तह पार। नारद आदिक वेद व्यासक मुन महान अनंत ध्याय ध्याय थके सभय कर कोट कष्ट दुरंत। गाय गाय थके गंधर्व नाच पत्र पार सोत सोत थके महासुर पायो नह पार। तो प्रसाद दोहरा एक समय श्री आत्मा उचर्यो मत्स्यो बैन सब प्रताप जगदीश को कहो सकल विद तैन। दोहरा को आत्मा स्वरूप है कहा सृष्ट को विचार कौन धर्म को कर्म है कहो सकल विस्तार। दोहरा कह जीतव कह मरण है कवन सुरक कह नरक को सुखड़ा को मूढ़ता कहाँ तरक अवतरक। दोहरा को निंदा जस है कवन कवन

कहाँ रंग राजा कवन हरत शोक है कवन को रोगी रागी कवन कहो तत्व है तवन दोहरा। कवन रिष्ट को पुष्ट है कहाँ सृष्ट को विचार कवन सृष्ट को भ्रष्ट है कहो सकल विस्तार दोहरा। कहाँ कर्म को कर्म है कहाँ भ्रम को नाश कहाँ चितन की चेष्टा कहाँ

को दाता ज्ञानी गवन कहो विचारो विचार। त्व प्रसाद दीरंग त्रिभंगी छंद दुर्जंदल दंडन असुर विहंडन दुष्ट निकंदन आदवृते चरा सुर मारण पतित उदाहरण नरक निवारण गूढ़ गते अछे अखंडे तेज प्रचंडे खंडे उदंडे अलख मते। जय जय होसी मै खासुर मर्दन रमक परदन छत्र छिते आसुरी बिहंडन दुष्ट निकंदन पुष्ट उदंडन रूप अते चंडा सुर चंडन मुंड बिहंडन धूम्र विधुंसन महक मथे दान प्रहार नरक निवारण अधम उदाहरण उर्ध अधे। जय जय होसी मखा सुर मर्दन रमक बर्दन आद प्रते डावरू डवंगे बबर बवंगे भुजा फरंगे तेज वरंग लंकुड़िया फांदे आयुध बांधे सैन विमर्दन काल सुरंग अष्टायुध चमके भूखंड दमके अत से झमके फुंक फनंग। जय जय हो सी मैखा सुर मर्दन रमक बर्दन दैत जिनंग चंडा सुर चंडन मुंड विमुंडन खंडे खंडन खून खिते दामनी दमंगण धुजा फरंकण फणी फुंकारण ज्योत जिते सरदार विवरखण दुष्ट प्रकरखण पुष्ट प्रहरखण दुष्ट मथे। जय जय हो सीमा खा सुर मर्दन भूमा कासन उर्ध अधे दामनी प्रहासन सुचभ निवासन सृष्ट प्रकाशन गूढ़ गते रक्ता सुर आचन।

सीमा खा सुरमर्दन पाप विनाशन धर्म करे। अग ओख निवारण दुष्ट प्रजारण सृष्टु वारण शुद्ध मते फणियर फुंकारण बाघ बकारण स्वस्थ प्रहारण साध मते सहति सन्नाहन अष्ट प्रवाहन बोल निवाहन तेज तुलंग। जय जय हो सीमा खा सुरमर्दन भूमा काश पताल जलंग। चाचर चमकारण चिच्छुर हारण धूम धुकारण द्रप मथे दाढ़वी वृदंते जोग जयंते मरुज मथंते गूढ़ कथे। करम प्रणासन चांद प्रकाशन सूर्य प्रतेजन अष्टभुजे। जय जय हो सीमा खा सुरमर्दन भरम विनाशन धरम धुजे। घुंगरु खमंकण शस्त्र झमंकण फणियर फुंकारण धरम धुजे। अष्टाढ़ प्रहासन श्रेष्ठ निवासन दुष्ट प्रणासन चक्र गते। केसरी प्रवाहे सुध सन्नाहे अगम थाहे एक वृते। जय जय हो सीमा खा सुरमर्दन आदि कुमार अगाध वृते। सुर नर पुन बंदन दुष्ट निकंदन भ्रष्ट विनाशन मृत मथे कावरु कुमारे अधम उधारे नरक निवारे आद कथे। किंकिणी प्रसोहन सुर नर मोहन सिंहारोहण पितल तले। जय जय होसी सब ठौर निवासन बाए पताल आकाशन ले। संकटी निवारण अधम उदाहरण तेज प्रकरखण तुंत तबे दुख दोख दहंती ज्वाल जयंती आद अनाद अगाध अच्छे। शुद्धता समर्पण तर्क वितर्कण तपत प्रतापण जपत जीवे। जय जय होसी शस्त्र प्रकरखण आद अनिल अगाध अभे। चंचला चखंगी अलग भुजंगी तुंद तुरंगण तिछ सरे गर्क साकुट

जय जय हो सी रक्ता सुर खंडन सुंभ चक्रत निसुंभ मथे बारज बिलोजन प्रतन विमोचन सोज बिसोजन कौज कसे दाम निभ्रहासे सुख सरनासे सुभ्रत सुभासे दुष्ट ग्रसे चंचला ब्रंगी वेद प्रसंगी तेज तुरंगी खंड सुरंग जय जय होसी मखा सुर मर्दन आद नाद गाधोरथंग घंटका बिराजे रुण झुण बाजे ब्रह्म भाजे सुनत सुरंग को किल सुन लाजे किल बिक भाजे सुख उपराजे मध उरंग दुर्जन दल दज्जे मंतन रिज्जे सभय न भज्जे रूह रणंग जय जय होसी मखा सुर मर्दन चंड चक्रतन आद गुरंग चाचरी प्रजोधन दुष्ट विरोधन रोष अरोधन क्रूर वृते धुमराज विधुंसन प्रलय प्रजुंसन जग विधुंसन शुद्ध मते जालपा जयंती सत्र मथंती दुष्ट प्रदाहन गाढ़ मते जय जय होसी मैखा सुर मर्दन आद जुगाद अगाध कते कतरियाण खतंगी अभय भंगी आदनंगी अगाध कते विरडलाच बिहंडन चक्षुर दंडन तेज प्रचंडन आद वृते सुर नर प्रतिवारण पतित उदारण दुष्ट निवारण दुख हरे जय जय होसी मैखा सुर मर्दन विश्व विधुन संसृष्ट करे दामनी प्रकाशे उन्तन नासे ज्योत प्रकाशे अतुल बले दानवी प्रकार खण सर्वर वर खण दुष्ट प्रदर्खण वितल तले अष्टायत बाहन बोर निबाहन संत बनाहन गूढ़ गते जय जय होसी मैखा सुर मर्दन आद अनाद अगाध गत वृते दुख दुख प्रबच्छन सेवक रक्षण संत प्रतक्षण शुद्ध सरे सारंग सन्नाहे दुष्ट प्रदाहे अर्दल गाहे दुख हरे गंजन गुमाने अतुल प्रवाने संत जमाने आद अंते जय जय होसी मैखा सुर मर्दन साद प्रतक्षण दुष्ट हंते कारण करीली गर्भ कहीली ज्योत जतीली तुंद मते अष्टायध चमकण शस्त्र झमकण दामिन दमकण आद वृते डुकडुकी दमंगे बाघ बुभंगे भुजा फरंगे शुद्ध गते जय जय होसी मैखा सुर मर्दन आद जुगाद अनाद मते चछरा सुर मारण नरक निवारण पते दोधारण एक भटे पापान बिहंडन दुष्ट प्रचंडन खंडे अखंडन काल कट्टे चंद्रानन चारे नरक निवारे पद उधारे मुंड मथे जय जय होसी मैखा सुर मर्दन धूम्र विधुंसन आत कथे रक्ता सुर मंदन चंड चक्रतन दान वर्धन बिडाल पदे सरधार विभरखण दुर्जन धरखण अतुल अमरखण दवरन तुझे धूमराज विधुंसन सुणत चुनसन सुंभ न पाद।

ਤੁਮ ਕਹੋ ਦੇਵ ਸਰਬੰਗ ਵਿਚਾਰ ਜਿਮ ਕੀ ਓ ਆਪ ਕਰਤੇ ਪਸਾਰ ਜਦ ਅਭੂ ਤਨ ਭੈ ਅਨੰਤ ਤਉ ਕਹੋ ਜਥਾਵਤ ਰਹਿਣ ਤੰਤ ਕਰਤਾ ਕਰੀ ਮਕਾਦਰ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਅਦ ਭੈ ਅਭੂਤ ਅਨ ਭੈ ਦਯਾਲ ਦਾਤਾ ਦੁਰੰਤ ਦੁਖ ਦੁਖ ਰਹਿਤ ਜਿਹ ਨੇਤ ਨੇਤ ਸਭ ਭੇਦ ਕਹਤ ਕਈ ਊਚ ਨੀਚ ਕੀਨੋ ਬਨਾਉ ਸਭ ਵਾਰ ਪਾਰ ਜਾ ਕੋ ਪ੍ਰਭਾਉ ਸਭ ਜੀਵ ਜੰਤ ਜਾਨੰਤ ਜਾਹੇ ਮਨ ਮੂੜ ਕਿਉ ਨ ਸੇਵੰਤ ਤਾਹੇ ਕਈ ਮੂੜ ਪਤ੍ਰ ਪੂਜਾ ਕਰੰਤ ਕਈ ਸਿੱਧ ਸਾਧ ਸੂਰਜ ਸਿਵੰਤ ਕਈ ਪਲਟ ਸੂਰਜ ਸਿਜਦਾ ਕਰਾਏ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਰੂਪ ਦ੍ਵੈ ਕੈ ਲਖਾਏ ਅੰਛਿਜ ਤੇਜ ਅਨਭੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾਤਾ ਦੁਰੰਤ ਅਤਵੈ ਨਾਸ ਸਭ ਰੋਗ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹਿਤ ਰੂਪ ਅਨਭੈ ਅਕਾਲ ਅਛੈ ਸਰੂਪ ਕਰੁਣਾ ਨਿਧਾਨ ਕਾਮਲ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਦੁਖ ਦੋਖ ਹਰਤ ਦਾਤਾ ਦਯਾਲ ਅੰਜਨ ਬਿਹੀਨ ਅਨਭੰਜਨਾਦ ਜਲ ਤਲ ਪ੍ਰਭਾਉ ਸਰਬਤ੍ਰ ਸਾਥ ਜਿਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਭੇਦ ਭਰਮ ਜਿਹ ਰੰਗ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਏਕ ਧਰਮ ਜਿਹ ਸਤਰ ਮਿੱਤਰ ਦੋ ਏਕ ਸਾਰ ਅਛੈ ਸਰੂਪ ਅਵਿਚਲ ਪਾਰ ਜਾਨੀ ਨ ਜਾਏ ਜਿਹ ਰੂਪ ਰੇ ਕਹੇ ਬਾਸ ਤਾਸ ਕਹੇ ਕੌਣ ਭੇ ਕਹੇ ਨਾਮ ਤਾਸ ਹੈ ਕਵਨ ਜਾਤ ਜਿਹ ਸਤਰ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਭਰਾਤ ਕਰੁਣਾ ਨਿਧਾਨ ਕਾਰਣ ਸਰੂਪ ਜਿਹ ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਨਹੀਂ ਰੰਗ ਰੂਪ ਜਿਹ ਖੇਦ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਕਰਮ ਕਾਲ ਸਭ ਜੀਵ ਜੰਤ ਕੀ ਕਰਤ ਪਾਲ ਉਰਧੰਗ ਬਿਰਹਤ ਸਿਧੰਗ ਸਰੂਪ ਉਧੰਗ ਪਾਲ ਜੁਧੰਗ ਅਨੂਪ ਜਿਹ ਰੂਪ ਰੇਖ ਨਹੀਂ ਰੰਗ ਰਾਗ ਅੰਛਿਜ ਤੇਜਨ ਭਿਜ ਦਾਗ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਵ ਬੰਧਨ ਦੁਰੰਤ ਜਿਹ ਨੇਤ ਨੇਤ ਨਿਸਿਧ ਨੂੰ ਚਰੰਤ ਪਾਇਓ ਨ ਜਾਏ ਜਿਹ ਪੈਰ ਪਾਰ ਦੀ ਨਾਨ ਦੋਖ ਦਹਿਤਾ ਉਦਾਰ ਕਈ ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਜਿਹ ਪਾਨ ਹਾਰ ਕਈ ਕੋਟ ਰੁਦਰ ਚੁਕੀਆ ਦੁਆਰ ਕਈ ਵੇਦ ਪਿਆਸ ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਨੰਤ ਜਿਹ ਨੇਤ ਨੇਤ ਨਿਸਿਧਨ ਉਚਰੰਤ ਤਵਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਵਈਏ ਦੀਨਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੇ ਨਿਤ ਸੰਤੂ ਬਾਰਕ ਨੀ ਮਨ ਗਾਰੇ ਪਛ ਪਸੂਨਕ ਨਾਕ ਨਰਾਤਿਵ ਸਰਬ ਸਮੈ ਸਭ ਕੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰੈ ਪੋਖਤ ਹੈ ਜਲ ਮੈਂ ਥਲ ਮੈਂ ਪਲ ਮੈਂ ਕਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਮ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀਨ ਦਯਾਲ ਦਯਾ ਨਿਤ ਦੁਖਨ ਦੇਖਤ ਹੈ ਪਰ ਦੇਤ ਨਹਾਰੈ ਦਾਹਤ ਹੈ ਦੁਖ ਦੋਖਨ ਕੌਦਲ ਦੂਜਨ ਕੇ ਪਲ ਮੈਂ ਦਲ ਡਾਰੇ ਅਖੰਡ ਅਖੰਡ ਪ੍ਰਚੰਡ ਪਹਾਰਨ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੰਭਾਰੈ ਪਾਰ ਨ ਪਾਇ ਸਕੇ ਪਦਮਾ ਪਦ ਵੇਦ ਕਤੇ ਬੇਦ ਉਚਾਰੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਰਾਜ ਬਿਲੋਕਤ ਰਾਜਕ ਰੋਖ ਰੋਹਾਨ ਕੀ ਰੋਜ ਨਟਾਰੈ ਕੀਟ ਪਤੰਗ ਕੁਰੰਗ ਭੁਜੰਗਮ ਭੂਤ ਭਵਿਖ ਭਵਾਨ ਬਨਾਏ ਦੇਵ ਦੇਵ ਖਪੇ ਅਹਮੇਵ ਨਾ ਭੇਵ ਲਖਿਓ ਭਰਮ ਸਿਉ ਭਰਮਾਏ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਕਤੇਵ ਕੁਰਾਨ ਹਸੇਵ ਥਕੇ ਕਰ ਹਾਥ ਨ ਆਏ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਿਨਾ ਪਤ ਸਿਉ ਕਿੰਸਰੀ ਪਦਮਾ ਪਤ ਪਾਏ ਆਦ ਅਨੰਤ ਅਗਾਧ ਤਵੇਖ ਸੋ ਭੂਤ ਭਵਿਖ ਭਵਾਨ ਅਭੈ ਹੈ ਅੰਤ ਬਿਹੀਨ ਨਾ ਤਮਾ ਬਾਦ ਆਗਾ ਦੁਖ ਅਛਿਦ੍ਰ ਅਛੈ ਹੈ ਲੋਕਨ ਕੇ ਕਰਤਾ ਹਰਤਾ ਜਲ ਮੈਂ ਥਲ ਮੈਂ ਫਰਤਾ ਪ੍ਰਭ ਹੈ ਦੀਨ ਦਯਾਲ ਦਇਆ ਕਰ ਸ੍ਰੀਪਤ ਸੁੰਦਰ ਸ੍ਰੀਪਤ ਮਾਪਤ ਹੈ ਕਾਮ ਨ ਕ੍ਰੋਧ ਨ ਲੋਭ ਨ ਮੋਹ ਨ ਰੋਗ ਨ ਸੋਗ ਨ ਭੋਗ ਨ ਵਹਿ ਹੈ ਦੇਹ ਬਿਹੀਨ ਸਨੇਹ ਸਫੋਤਨ ਨੇਹ ਬਿਰਕਤ ਅਗੇਹ ਅਛੈ ਹੈ ਜਾਨ ਕੋ ਦੇਤ ਅਜਾਨ ਕੋ ਦੇਤ ਜਮੀਨ ਕੋ ਦੇਤ ਜਮਾਨ ਕੋ ਦੇਤ ਦੈ ਹੈ ਕਾਹੇ ਕੋ ਡੋਲਤ ਹੈ ਤੁਮਰੀ ਸੁਧ ਸੁੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਪਦਮਾ ਪਤਲੈ ਹੈ ਰੋਗਨ ਤੇ ਅਰ ਸੋਗਨ ਤੇ ਜਲ ਜੋਗਨ ਤੇ ਵੋ ਭਾਂਤ ਬਚਾਵੇ ਸਤਰ ਅਨੇਕ ਚਲਾਵਤ ਗਾਵਤਉ ਤਨ ਏਕ ਨ ਰਾਗਨ ਪਾਵੈ ਰਾਖਤ ਹੈ ਅਪਨੋ ਕਰਦੇ ਕਰ ਪਾਪ ਸੰਭੂਹਨ ਭੇਟਨ ਪਾਵੇ ਔਰ ਕੀ ਬਾਤ ਕਹਾ ਕਹਿ ਤੂੰ ਸੋ ਸੋ ਭੇਟ ਹੀ ਗੇ ਪਟ ਬੀਚ ਬਚਾਵੈ ਜਛ ਭੁਜੰਗ ਸੋਦਾ ਨਵ ਦੇਵ ਭੇਵ ਤੁਮੈ ਸਭ ਹੀ ਕਰ ਧਿਆਵੈ ਭੂਮ ਅਕਾਸ ਅਵਤਾਰ ਸਾਤਰ ਜਛ ਭੁਜੰਗ ਸਭੈ ਸਿਰ ਨਿਆਵੈ ਪਾਏ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਪ੍ਰਭਾਹੋਂ ਕੋ ਨੇਤ ਹੀ ਨੇਤ ਭੇਦ ਬਤਾਵੇ ਖੂਜ ਥਕੇ ਸਭ ਹੀ ਕੁਜੀਆ ਸੁਰ ਹਾਰ ਪਰੇ ਹਰ ਹਾਥ ਨ ਆਵੈ ਨਾਰਦ ਸੇ ਚਤੁਰਾਨੰ ਸੇ ਰੁਮ ਨਾਰਿਕ ਸੇ ਸਮਭੂ ਮਿਲ ਗਾਯੋ ਵੇਦ ਕਤੇਵ ਨ ਭੇਦ ਲਖਿਓ ਸਭ ਹਾਰ ਪਰੇ ਹਰ ਹਾਥ ਨ ਆਯੋ ਪਾਏ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਉਮਾਪਦ ਸਿੱਧ ਸਨਾਤ ਸਨੰਤ ਧਿਆਯੋ ਧਿਆਨ ਧਰੋ ਤਹਿ ਕੋ ਮਨ ਮੈਂ ਜਿਹ ਕੋ ਅਮਿਤੋਜ ਸਭੈ ਜਗ ਛਾਯੋ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਕਤੇਵ ਕੁਰਾਨ ਅਭੇਦ ਨਿਰਪਾਨ ਸਭੈ ਪਚਹਾਰੇ ਭੇਦ ਨ ਪਾਏ ਸਕਿਓ ਅਨਭੇਦ ਕੁਖੇਦਤ ਹੈ ਅਨਛੇਦ ਪੁਕਾਰੇ ਰਾਗ ਨ ਰੂਪ ਨ ਰੇਖ ਨ ਰੰਗ ਨ ਸਾਕ ਨ ਸੋਕ ਨ ਸੰਗ ਤਿਹਾਰੇ ਆਦ ਅਨਾਦ ਅਗਾਧ ਅਭੇਖ ਅਦਵੇਖ ਜਪਿਓ ਤਿਨ ਹੀ ਕੁਲਤਾਰੇ ਤੀਰਥ ਕੋਟ ਕੀਏ ਇਸਨਾਨ ਦੀਏ ਬਹੁਦਾਨ ਮਹਾਵ੍ਰਤ ਧਾਰੇ ਦੇਸ ਫਿਰਿਓ ਕਰ ਭੇਸ ਤਬੋਧਨ ਕੇਸ ਧਰੇ ਨ ਮਿਲੇ ਹਰ ਪਿਆਰੇ
आसन कोट करे अष्टांग हरे मोहन्यास करे मुख कारे दीन दयाल अकाल अवचे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे। तव प्रसाद कवित अत्र के चलैया छित छत्र के धरैया छत्र धारियों के छलैया महासत्रन के साल है दान के दिवैया महामान के बढ़ैया अवसान के दिवैया है कटैया जम जाल है। युद्ध के जितैया और विरुद्ध के मिटैया महाबुद्ध के दिवैया महामान हो के मान है ज्ञान हो के ज्ञाता महाबुद्ध के दाता देव काल हो के काल महाकाल हो के काल है। पूर्वी न पार पावे हिंगुला हिमाल ध्यावे गोर कर दे जी गुण गावे तेरे नाम है। जोगी जोग साधे पौन साधना की तेक बांधे अरब के अरबी आराध तेरे नाम है। फरा के फिरंगी माने कंधारी कुरेसी जाने पच्छम के पच्छम ही पछाने निज काम है। मरहटाम गेले तेरी मान सो तपस्या करे तेड़ वे तिलंगी पहचाने धर्म धाम है। बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दिलवाली तेरी आज्ञा में चलत है। रोह के रोहेले मांग देश के बंगेले वीर बंग सी बुंदेले पाप पुंज को मलत है। गोखा गुन गावे चीन मचीन के शीस ने अवे ते बते दे आए दुख देह के दलत है। जिन्हें तोहे ध्यायो तिन्हें पूर्ण प्रताप वायो सर्व धन धाम फल फूल सो फलत है। देव देव दान को सुरेश दानवान को महेश गंग धान को अभेश कहियत है। रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और काहू पे न दीन सादा दीन कहियत है। पाई है न पार तेज पुंज में अपार सर्व विद्या के उदार है अपार कहियत है। हाथी की पुकार पल पाछे पहुँचत ताहे चिड्डी की चंघार पहले ही सुनियत है। किते इंद्र द्वार किते ब्रह्मा मुख चार किते कृष्ण अवतार किते राम कहियत है। किते ससरासी किते सूरज प्रकाशी किते मुंडिया उदासी जोग द्वार दहियत है। किते महादीन किते व्यास से प्रवीण किते कुमेर कुलीन किते जश कहियत है। करते है विचार पैना पूरन को पावे पार ताही ते अपार निराधार लहियत है। पूरा अवतार निराधार है न पारावार पाई है न पार पे अपार के बखानिये। अद्वै अविनाशी परम पूर्ण प्रकाशी महारूप हूँ के राशि है अनासी के कमानिये। जंत्र हूँ न जात जाके बाप हूँ न मायता की पूर्ण प्रभा की सो छटा के अनुमानिये। तेज हूँ को तंत्र है के राजसी को जंत्र है के मोहनी को मंत्र है के निजंत्र के मां जानिए। तेज हूँ कुतर है के राजसी को सर है के शुद्धता को घर है के सिद्धता की सार है। कामना की खान है के साधना की शान है विरक्तता की बान है के बुद्ध को उदार है। सुंदर स्वरूप है के हुपन के भूप है के रूप हूँ के रूप है कुमत को प्रहार है। दीनन को दाता है गनीमन को गारक है साधन को रक्षक गुणन को पहार है। सिद्ध को स्वरूप है कि बुद्ध को विभूत है कि क्रोध को भूत है कि अच्छे अविनाशी है। काम को कुनिंदा है कि खूबी को दिहंदा है गनीमन गरिंदा है कि तेज को प्रकाशी है। काल हूँ के काल है कि सत्रण के साल है कि मित्रण को ब्रोकत है कि वृद्धता की वासी है। जोग हूँ को जंत्र है कि तेज हूँ को तंत्र है कि मोहनी को मंत्र है कि पूर्ण प्रकाशी है। रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के सिद्धता को वास है के बुद्ध हूँ का घर है। देवन को देव है निरंजन अभेव है या देवन को देव है के शुद्धता को सर है। जान को बचैया है ईमान को दिवैया है जमजाल को कटैया है के कामना को कर है। तेज को प्रचंड है अखंडन को खंड है महीपन को मंड है के स्त्री है नर है। विश्व को भरण है के आपदा को हरण है के सुख को करण है के तेज को प्रकाश है। पाई है न पार पारावार हूँ को पार जाको की जत विचार सो विचार को निवास है। हिंगुला हिमालय का वह बसी हलब ध्याव पूर भी न पार पावे असत अनाश है। देवन को देव महादेव हूँ के देव है निरंजन अभेवनाथ अद्वै अविनाशी है। अंजन विहीन है निरंजन प्रवीण है के सेवक अधीन है कटैया जम जाल के। देवन के देव महादेव हूँ के देवनाथ भूम के भुजैया है मोहैया महाबाल के। राजन के राजा महासाज हूँ के साजा महाजोग हूँ को जोग है धरैया ध्रुम छाल के। कामना के कर है के बुद्धता को हर है के सिद्धता के साथी है के काल है कुचाल के।
छीर कैसी छीरा वध छाज कैसी छतरा नेर छपा कर कैसी छप काल इंद्र के कूल के हंस निशी हरों हीरा सी हुसैन बात कंगा कैसी धार चली सातों सिंध रूल के पारसी पलाऊगढ़ रूपा कैसी रामपुर सोरासी सुरंगाबाद निके रही झूल के चंपासी चंदेरी कोट चांदनी सी चांदागढ़ कीरत तिहारी रही मालती सी फूल के फटक सी कैलाश कमाऊगढ़ कांसीपुर सीसा सी सुरंगाबाद निके सोहियत है हिमा सी हिमालय हर हार सी हलबाने रहंस कैसी हाजीपुर देखे मुहियत है चंदन सी चंपावत चंद्रमा सी चांद्रागिर चांदनी सी चांदागढ़ जोन जोहियत है गंगा सम गंग धार बकान सी बिलंदावाद कीरत तिहारी की उजियारी सोहियत है फरासी फिरंगी फरासी इसके दुरंगी मकरान के मृदंगी तेरे गीत गाइयत है भखरी कंधारी गोर गखरी करते जाचारी पौन के आहारी तेरो नाम ध्यायत है पूरब पलाऊ काम रूप ओ कमाऊ सर्व ठौर में बिराज जहां जहां जाइयत है पूर्ण प्रतापी जंत्र मंत्र तेता पिनात कीरत तिहारी।

चौपई। सम सत्र सहस भणी जय अर्ध सहस भुन तीन कह जय भादव सुदी अष्टमी रवारा तीर सत द्रव ग्रंथ सुधारा इत श्री चरित्र पखयाने त्रिया चरित्र मंत्री भूप संबादे।

अब मैं कथा संक्षेपते सब हूँ कहत सुना कब बाच दोहरा ठाढ़ भयो मैं जोर कर बचन कहा सुर न्याय पंथ चले तब जगत में जब तुम करो सहाय दोहरा जी जे तुमरे ध्यान को नितुड़ ध्यान है संत अंत लेंगे मुक्त फल पावेंगे भगवंत दोहरा तिन बेदियन की कुल बिखै प्रगटे नानक राय सब सिखण को।

तन बुद्ध सो दीपक ज्यों जियारे। ज्ञानै की बढ़नी मनो हाथ लै कातर ताकुतवार भारे दोहरा। राम कथा जुग जुग।

लख सुरतन संग्राम रण में छुटे प्राण, लख सुरति लख ज्ञान त्यान पढ़िए पाठ पुराण, जिन करते करना किया लिखिया आवन जान, नानक मति मिथ्या कर्म सच्चा निशान।

मूर्ख पंडित हिकमत हुजत संजे करे पिया धर्मी धर्म करै गवावे मंगे मोख द्वार जति सदावे जुगत न जाने छाड़ पै कर बार सब को पूरा आपे होवे घट ना कोई आखे पद प्रमाणा पिछे पाई है ता नानक तो लिया जापे महला पहला वदी सबज ज्ञान का सच्चा वेखे सोए।

त्रि शब्दं शूर शब्दं शुद्ध शब्दं प्राकृत है सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने पे ओ नानक ता कदास है सोई निरंजन।

पाठ पुस्तक संध्या बादम सिल पूज सबगल समादम मुख झूठ भुखन सारी त्रैपाल तिहाल विचारम गल माला तिलक लाटम दुई धोती बस्त्र कपाटम जे जानस ब्रह्मं कर्मं सब फोकट ने चो कर्मं कहना नानक ने जो त्यावे मेरे सतगुरु वाट न पाए।

मत पिटै वे मत पिटै हो अन साडा फिटै तन फिटै फेर करेन मन जूठै चुली प्रेन कहो नानक सच तियाई सुच होवे ता सच पाई पौड़ी चिते अंदर सब।